दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: हमें बुलाया तुमने?
1: जब खुद नहीं आते तो बुला भेजना पड़ता है, और तुम तो मेरे कमरे का रास्ता भी तो भूल गए।
0: लेकिन जो सुमिता की ओर हमारा कर्तव्य है उसे पूरा ना करें।
1: लेकिन मेरी ओर जो कर्तव्य है उसका क्या होगा?
0: तुम तो इस घर की सब कुछ हो, मालकिन रानी सब चाबी तुम्हारे हाथ की उंगलियों पे है।
1: मालकिन रानी? हाँ, ले लो चाबी, रखो अपने पास, नहीं तो दे दो अपनी सुमिता को। मुझे तुम चाहिए हो राजा, या मुझे 10 बरस पहले का जीवन फिर से लौटा।
0: अपना तो हमें खुद पता नहीं, बाकी 10 बरस पहले का जीवन 10 बरस बाद लौट कर आता नहीं माधुरी। वो हमारा हो, तुम्हारा या किसी और का।
2: Well, since you couldn't figure out the songs for the dedication of one great personality of our silver screen, I thought I've added some dialogue in that song just to make you remember that personality. And of course, he was the master of the dialogues, Johnny. And once you say Johnny like that, you know whose tribute that represents. And speaking of the master of the dialogues and master of Shairi, our Shairi Azam is here on the phone line. So let me put Haq Saab on. And of course, he has a Shairi on any subject, maybe on the great personality. Maybe he can talk about the great actor Raj Kumar. Not a terrific actor, but his dialogue delivery was remarkable. So let me put our friend Mr. Huck, the Shairi Azam, I call him, and see what he has to say. Hello. Aapko sunai deta hai? I think I probably missed him. Maybe he'll call back and give us a little jhalak of his shayari. So I'll wait for him. In the meantime, if you have any special song for Rajkumar, we're giving him a tribute. But let's see if I can put Mr. Huck on. Hello? Okay, cut ho gaya kya? Acha, hold on. Bolo. हेलो
3: हेलो नमस्कार
2: हक साहब, आप हैं हमारी?
3: अरे मैं धरती का बोझ बना हुआ हूँ। पता नहीं कब मेरी आप ट्रिब्यूट देंगे मुझे।
2: डोंट से दैट यार।
3: मैंने कहा इतनी गर्मी पड़ी है, आपको घर में चैन नहीं है या एसी खराब?
2: मैं इसलिए मैं आ रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए।
3: अच्छा, और यहाँ तो यार सीढ़ियाँ हैं, यहाँ तो लिफ्ट भी नहीं है।
2: But
3: thank you very much for coming to the studio.
2: Oh, thank you for always being my loyal listener and very, very talented. And well, I cannot compare you with anybody because you're one of a kind. क्या बात है? आपको राजकुमार की कोई डायलॉग बताना है आपको? जाने मिस्टर हक,
3: तुम इतनी गर्मी में किस लिए आए हो?
2: मुझे भी मालूम नहीं है जाने।
3: यार सेंट्रल एसी है, वो ट्रिप कर गया। अरे छोटा छोटा खरीदो, एक एक कमरे वाला $79-$89 का। बड़े हो सेंट्रल एसी के जानी, मैं तुमसे कह रहा हूँ, आपने इस प्रोड्यूसर का किस अमाउंट पे साइन की क्यों नहीं किया जाने?
2: किसका?
3: प्रोड्यूसर के सर से बिजनौरी तेल की खुशबू आए। उससे साइन नहीं करता।
2: क्या बात है।
3: तो मैंने ये गर्मी में मैंने कुछ अशआर लिखे हैं, आपकी नजर में करता हूँ।
2: प्लीज डू, एंड यू नो दैट मेक्स माय डे, बिकॉज़ आई टेक द टाइम आउट, गर्मी या शर्मी और रेन और शाइन और स्नो, आई ट्राई टू बी हियर फॉर आवर लॉयल लिसनर्स, एंड आई बीन डूइंग दैट फॉर 52 इयर्स यार। Thank you.
3: पेट्रोल भी महंगा है।
2: हाँ जी।
3: और गर्मी भी है बड़ी।
2: हाँ।
3: फिर भी चला रहे हैं। हम गाड़ियां बड़ी हर आदमी के पास बड़ी गाड़ी है
2: बात सही है
3: हुआ है महंगा और महंगा हुआ है तेल और जेवर की दुकानों में फिर भी है रेल पेल और शक्कर से महंगा गुड़ है चावल से महंगी दाल और महंगाई की तंगी से खिंचने लगी है खाल और स्कूल की तालीम पर आता नहीं है खर्च पब्लिक स्कूल स्कूल की तालीम पर आता नहीं है खर्च और सब्जी मिलेगी सस्ती महंगी हुई है मिर्च हैदराबादी परेशान होते महंगाई से इंसान हुआ माहिए बेआब माही कहते हैं मछली को
2: किसको मछली अच्छा है
3: पानी की मछली जैसे तड़पती है ना
2: हाँ।
3: वैसे ही महंगाई से हम लोग तड़प रहे हैं
2: अभी तो मैं भी तड़प रहा हूँ
3: हुआ माहिए बेआब और पानी हुआ है कीमती सस्ती हुई शराब और आंसू की जगह पानी आंखों से बरसता है
2: क्या बात
3: और
2: है?
3: आज का इंसान अब रोटी को तरसता है और आखिरी शेर ये है देव जोशी साहब आपके लिए कि रोटी हुई है महंगी
2: जी
3: सस्ती है डबल रोटी रोटी हुई है महंगी सस्ती है डबल रोटी ये दौर इमिटेशन का हर चीज यहाँ खोटी
2: जी लेकिन हम तो ओरिजिनल है ना
3: जी
2: हम तो ओरिजिनल है मैं कॉपी नहीं करते ना किसी की
3: नहीं खोटे होते तो अच्छा होता है कामयाब रहते है ना
2: जी तो बात सही है
3: नाकाम लोग
2: हैं नहीं आप भी ओरिजिनल हो मैं भी ओरिजिनल हूँ सो We try our
3: ओरिजिनल की कहाँ कदर है यार आप बताइए अब तो ये वो आर्टिफिशियल निकला जो है AI
2: right oh my god
3: जो है वो
2: you don't know what to believe
3: हाँ यार वो अभी मैंने दिलीप कुमार और मधुबाला का देखा
2: हाँ
3: बड़ा अच्छा है लेकिन ये कि इतने जवान तो नहीं थे वो लोग
2: नहीं नहीं नहीं वो तो कभी जो भी देखते हैं हम वो इंटरनेट में मालूम नहीं कि ये सच्चा है या यू नो बनावट
3: नहीं ज्यादातर बनावट इसलिए कि वो भी तो एक कंप्लीट साइंस हो गया है ना
2: या बट इट मेक्स इट इंटरेस्टिंग बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो द रियलिटी
3: बट ओरिजिनल इज ओरिजिनल यार
2: दैट्स राइट एंड स्पीकिंग ऑफ ओरिजिनल आई हैव दिलीप कुमार फॉर यू एज वेल एज राजकुमार ट्रिब्यूट एंड So, you know, that's what I do. Try to remember those personalities that we grew up with. Thank you, Janab. आपने राम की ट्रिब्यूट सुनी मैंने शुरू शुरू में बात की She's a strong woman, but, you know, to lose a personality like that, it's just...
3: Bahut lively thay, bahut lively
2: thay. Yes, talented. He was always hardworking, yet he would participate in our musical mayfield.
3: Generous also.
2: Yes. And, you know, his group that he worked with were nominated, I think they received a Nobel Prize, so he was very, very talented as well.
3: Multi-talent.
2: Yes.
3: Or, we have met his mother also.
2: Right. You remember that?
3: Mother.
2: And his daughter too, Shalini. And Shalini and...
3: Shalini Beti. Bahut. Hamari great hai.
2: Yes.
3: Yaar, unko
2: so salute to Kanta and Ram's family and... we miss him.
3: उनको सब्र दे, उनको patience
2: दे, we miss him. We miss him.
3: उनको tolerance दे, और उनके साथ भला हो.
2: And Kanta ji sent some videos of his singing in our mayfil, and that makes you proud, and at the same time that makes you. Yeah, and you know at the same time it makes you sad because we lost such a wonderful.
3: लेकिन देवजी साहब बात ये है ना कांता जी तो लेकिन ये फेज हर आदमी के साथ गुजरना और आदमी समझता नहीं है जवान लोग समझते हैं वो मरेंगे नहीं
2: या
3: है ना
2: बात सही है
3: यहाँ
2: सबको जाना है
3: सुन रहा था उसमें कहता है कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा यंग लोग मरते हैं विद एक्सीडेंट एंड
2: दैट्स ट्रू
3: बोजिंग एंड रेकलेस ड्राइविंग
2: एंड आल्सो यू नो अ लॉट ऑफ मिस
3: वो तो समझते हैं मौत जो है वो बच्चे के लिए और बीमार के लिए और बूढ़े के लिए है दैट इज रॉन्ग
2: यस यस यस बट यू नो यू हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ इन दिस वर्ल्ड मेक द मोस्ट ऑफ इट दैट्स व्हाट आई बिलीव
3: बिल्कुल बिल्कुल
2: yeah. so quality life होना चाहिए yes yes and you know do the best you can in the subjects that you enjoy the most and your family and you know all your friends and loyal listeners like yourself this is what we do this for right
3: अच्छा कल जो है ना कल का एक वाक्य हुआ कि वो हमारे इधर एक सब्जी मंडी है लॉरेंसविल में उसके जो ओनर है ना बाले जी क्या ना सरदार जी हैं वो बेचारे दूसरा बर्लिंगटन में स्टोर खोल रहे थे वो गए हुए थे उनको वहाँ पे जो है मुझे लगता है सन स्ट्रोक हुआ ही फेल डाउन ब्लड प्रेशर फेल डाउन एंड ही डाइड
2: ओह नो नो वाओ
3: का जो है ट्यूसडे को है ये क्रिमेशन है
2: ओह माय गॉडनेस
3: वेरी सैड यार
2: यस वेरी सैड
3: वो मिडिल एज के आदमी थे
2: Yeah, no, this is an unbelievable life, you know, but... And you stay, you know, young and enjoyable talking to you always.
3: हमारे बच्चों को जो है सोचना चाहिए कि बहुत केयरफुल लाइफ गुजारो भाई
2: यस
3: और जितना जिंदा हो अपने माँ बाप की खिदमत करो
2: बहुत बात सही है एकदम
3: आपने जैसे हमारे अताई साहब की बहुत खिदमत की हालांकि वो आपसे दूर रहते थे
2: जी ना ये कभी
3: बच्चों में सबसे ज्यादा आपको प्यार करते थे
2: जी जी जी
3: की बातों से पता चलता
2: yes.
3: और हम लोग से बहुत मोहब्बत
2: आई ऑलवेज रिमेम्बर हिम एवरी डे
3: लोग थे ना उनसे बहुत मोहब्बत थी
2: यस So your father, my father, you know, they are the most important people in our lives, you know.
3: We are following their footsteps. I don't know if we succeeded or not, but we try. We are
2: yes,
3: trying.
2: Yes. But anyway, Haq Saab, you stay cool and healthy and harmonious. And
3: may God give sabr and patience.
2: Thank you.
3: Perseverance to
2: you too, you too, you too.
3: Chant. Charlie and his family.
2: And, you know, if you can come up with a special song that is in your mind for days like this, let me know and I'll play it for you. But right now, let me play for Reshma this song because...
3: Aap Reshma ke
2: nasad waqya
3: hai. Nadar te ho yaar.
2: Nah, she supports me in everything that I do. And
3: survive karna hai. Chalo.
2: So maybe ye kehta hu ki wo saath hi rahe tere bina kya jeena
3: Reshma ji forgive me for that
2: you cannot be forgiven
3: you can enjoy your show
2: all right thank you for calling and appreciate
3: thank you for taking the call
2: so and Reshma enjoy this wonderful song that we used to enjoy

0: राजीव, तुम इस मिशन पर नहीं जा सकते।
1: सर, तुम नहीं जाओगे? सर, लेकिन मेरे तो सब जहाज तैयार खड़े हैं। सर,
0: जहाज जाएंगे, तुम नहीं जाओगे।
1: एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ समझ नहीं सका, इसका मतलब क्या है?
0: ये हमारा फैसला है।
1: क्या मुझे कुछ दिल समझा गया?
0: हरगिज़ नहीं।
1: नाकाबिल?
0: नहीं।
1: मुझ पर किसी जुर्म का शक है सर?
0: नहीं।
1: तो फिर मैं ये पूछना चाहूंगा कि फैसला कैसे किया गया?
0: तुम ये सवाल नहीं पूछ सकते।
1: तो आप ये काम किसी और को सुपुर्द कर देना चाहते हैं?
0: हाँ।
1: आप मुझे जलील करना चाहते हैं, आप मुझे बुजदिल कहलवाना चाहते हैं, आप मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं। आज जबकि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुहिम को जाने को हूं, आप ये काम मुझसे छीन कर किसी और को देना चाहते हैं? आपने कभी ये सोचा कि मैं किसी और को अपना मुंह कैसे दिखा सकूं?
0: हम तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। जो कुछ हमने कहा वो ऑर्डर, तुमने ऑर्डर सुन लिया, तुम जा सकते हो।
1: नो सर, नो, मैं यहां से यूं नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। मैं सवाल का जवाब लिए बगैर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं सर कि मैं जो कुछ कह रहा हूं आप उस पर मेरा कोर्ट मार्शल करवा सकते हैं। आप मेरे ये बिल, मेरी जिंदगी की पूंजी उतार सकते हैं, लेकिन लेकिन जब इज्जत नहीं तो बाकी क्या रह जाता है? मेरा जी चाहता है सर कि मैं इस वक्त आपका हुक्म रद्द करके उस वाहन पर अपनी मर्जी से चला जाऊं।
2: तुम हद से गुजरते जा रहे हो स्क्वाड्रन लीडर राजीव शुक्ला।
1: I'm very sorry, sir. मुझे बहुत शर्म आ रही है सर, लेकिन लेकिन लेकिन सर मेरा कसूर क्या है? मुझे ये पूछने का तो हक है कि मेरा कसूर है क्या? मुझसे कुछ गलती हुई? मैंने कोई बेजा

मैंने एक शर्त मांगी थी मोहिनी कि तुम्हारी लाश हिंदुस्तान वापस भेज दी जाए। मेरे बारे में भी हमेशा तुम यही सोचना मोहिनी कि हिंदुस्तान के बाहर भी जमीन के जिस टुकड़े पर मेरी राख बिखरेगी वो जमीन हमेशा के लिए हिंदुस्तान हो जाएगी।